0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना

0: की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रूपये से बढ़ाकर 6,000 रूपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इससे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता है, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. The Finance Ministry has clarified that there will be no charges for person-to-person P2P UPI transactions irrespective of the amount transferred. The Ministry added yesterday that person-to-merchant P2M payments up to 2,000 rupees, including transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also remain free. Consequently, the Ministry stated that about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. National Payments Corporation of India, NPCI, has announced that a revised UPI merchant discount rate framework will come into effect from 15th of next month. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns. The spokesperson added, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said the issue of the Houthis

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना मिति 16 सितंबर दिन बुधवार नूं शाम 5:30 बजे।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन विच कपड़े पाउण तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके फाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता RBI दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। RBI कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार मैं नहीं लाउणा।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
5: दोस्तो 7:30 ते 27 सैकेंड हो चुके ने ते साढ़े नाल ने इस वक्त हैल्थ शो दे विच डॉक्टर अनुराग MD आयुर्वेदा ने जिहड़े के सरकारी हस्पताल दे विच अपनियां सेवावां निभा रहे ने ते जानदे आ इन्हां तों इस आयुर्वेद बारे। हैलो
6: हैलो
5: डॉक्टर साहब नमस्कार जी, स्वागत है आकाशवाणी FM बठिंडा तो प्रसारित हो रहे हैल्थ शो सिलसिले दे विच। प्रोग्राम चल रहा साडा सर्जरी सवेर, स्रोतियां दे रूबरू हो तुसीं, तुहाडा आकाशवाणी FM बठिंडा दी समुची टीम वल्लों, साडे निर्माता निर्देशक प्रोग्राम दे ते साडे स्टेशन डायरैक्टर बलजीत शर्मा जी वल्लों तुहाडा स्वागत है जी।
6: जी सर बहुत बहुत धन्यवाद जी।
5: डॉक्टर साहब जदों गल करदे हां असीं आयुर्वेद दी तां नाल नाल ही ओ पुरानियां जड़ी बूटियां जिहड़ियां असीं देखियां नहीं हुंदियां उन्हां दी ताकत बारे सानूं पता होना चाहीदा। बहुते लोक अजकल फिर उही पुराने युग दे विच आयुर्वेद वल वापस आ रहे हैं। तुसीं किस तरीके नाल जिहड़ा हैगा इहदे इतिहास ते चानना पाओगे आयुर्वेद ते?
6: इहदा इतिहास जिहड़ा है साडा, क्योंकि इंडिया दा जिहड़ा कल्चर रहा है हिंदुस्तान दा उहदे नाल थोड़ा जुड़िया होया
5: जी।
6: तुसीं तुहानूं ध्यान होणा कदे सुनी होणी है तुसीं कहानी, इक समुद्र मंथन होया सी बहुत पहलां
5: जी,
6: जिहदे चों विष निकला सी ओह शिव जी ने पीता सी, उहनां ने अपने गले च धारण कीता सी, इसे करके उहनां नूं नीलकंठ कहिंदे ने
5: जी।
6: ते उसे समुद्र मंथन चों जदों विष तों बाद एंड दे विच अमृत निकलिया सी, तो जो अमृत कलश लै के आए सी ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨਵੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੀਗੇ
5: ਜੀ,
6: ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਕਿਤਸਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਧਨਵੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ।
5: ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमरीका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई।

0: मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
1: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का नुकसान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
2: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। NSG केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
3: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
6: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
7: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के तिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट

0: मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्रीय गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर 44 अरब डॉलर हुआ। लोकसत्ता के अनुसार रक्षा

0: मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, एआई और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमेरिका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: गवर्नमेंट सेज देयर विल बी नो चार्जेस एट ऑल फॉर पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजैक्शंस इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड। महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड्स टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन्स टू शुगर मिल्स टू क्लियर पेंडिंग ड्यूज ऑफ फार्मर्स फॉर 2025-26 क्रशिंग सीजन। दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड्स टू डबल मंथली इंसेंटिव फॉर आशा वर्कर्स फ्रॉम 3,000 टू 6,000 रुपीज टू ऑल्सो बिल्ड हॉस्टल्स फॉर 10,000 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द नेशनल कैपिटल। India US joint military exercise Youth Abhyas begins at Oli in Uttarakhand and Mahajan field firing range in Rajasthan. New Zealand's parliament passes legislation to implement its free trade agreement with India. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international to take unassailable 2-0 lead in the 3-match series. Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate (MDR) framework for small merchants, will also remain free. The ministry said that consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. The ministry said that MDR is neither a tax nor a charge collected by the government or National Payments Corporation of India, NPCI. It is distributed among payment ecosystem participants, including banks and payment application providers, to support the operation and continued expansion of the UPI ecosystem. NPCI has said that a revised UPI merchant discount rate framework has been introduced on select merchant transactions effective from the 15th of next month, while keeping UPI free for consumers. A correspondent reports that a dedicated fund for promoting use of UPI by small merchants will be set up with contribution of 5% of total MDR collections.
3: The Finance Ministry said that charges will apply only to person-to-merchant transactions exceeding 2,000 rupees. It said that UPI app providers are explicitly prohibited from levying platform fees or hidden charges. The Ministry said that banks have been advised to ensure that merchants do not pass merchant discount rate charges to customers for UPI payments. A nominal MDR of 0.4% will be levied on person-to-merchant transactions about 2,000 rupees, while for high-value transactions

आपने ट्यून किया है विविध भारती और प्रोग्राम है चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं रामलीला गोलियों की रासलीला। इस फिल्म का गीत श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाजों में, सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है, संजय लीला भंसाली का।

0: साथियों, आज इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी भी है, यानी कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हृदय स्वास्थ्य और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का ये अवसर है। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एक एंजियोलॉजी स्वास्थ्य में सुधार करती है, जीवन प्रत्याशा बढ़ाती है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। पहली कोरोनरी एंजियोप्लास्टी डॉक्टर एंड्रियास ग्रुंटजिग द्वारा 16 सितंबर 1977 को की गई थी। सितंबर 2022 में महासभा ने 16 सितंबर को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं विशाल ददलानी, के नीति मोहन और बप्पी लाहिड़ी की आवाजों में गुंडे फिल्म का गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं, सोहेल सेन का संगीत।

0: बैंग बैंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाजों में। अन्विता दत्त ने इसे लिखा था और विशाल शेखर का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह।

0: एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ए.आर. रहमान के संगीत निर्देशन में सुनिए इरशाद कामिल का लिखा ये गीत। अलका याग्निक और अरिजीत सिंह ने इसे स्वर दिए हैं और फिल्म का नाम है तमाशा।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं एबीसीडी फिल्म का गीत हार्डकोर की आवाज में। मयूर पुरी ने इसे लिखा है, सागर जिगर का संगीत।

एबीसीडी फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

0: कैसी तबीयत है जनाब की?
1: संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही

राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना, ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घिउन ज्याला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिप्पर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आनियो, आनियो, शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना मिति 16 सितंबर दिन बुधवार नूं शाम 5:30 बजे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई क्षेत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं। श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जा रहा है। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600-600 सैनिक भाग ले रहे हैं। ये अभ्यास औली के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित महान साधिका ने अपनी दिव्य स्वर साधना से भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व भर में गौरवान्वित किया। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। केरलम में अन्नाकुलम और इडुक्की जिलों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश चंडीगढ़ दिल्ली में भी आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गणपति बप्पा मौर्य और गणपति के त्यौहार के आने की गणेश चतुर्थी की सभी तरफ धूम है और इसीलिए आप सभी को इस गणपति पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। और अब अगर आप एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड और फन के दीवाने हैं तो फिर जो है आप सबके घरों में ना एक चीज बहुत ही कॉमन होगी और वो ये कि आपके घर के टीवी का जो रिमोट है ना वो बैटरी से भले ही एक दो महीने चले लेकिन थप्पड़ से चार पांच महीने चली जाता होगा, है कि नहीं है? इस बात को सुनकर जब आप मुस्कुरा रहे हैं ना, मैं जानती हूँ सारी बातों को आपके। और न सिर्फ इसका असर आपके टीवी के रिमोट पर है बल्कि मुझे लगता है ना रेडियो पर भी इसका कुछ खास असर हुआ है, क्योंकि जब भी फ्रिक्वेंसी पकड़ती नहीं ना तो आप लगाना चालू करते हैं थप्पड़ ना, इसीलिए पुराने वाले जो रेडियो सेट है शायद वो बंद होने जा रहे हैं, धीरे धीरे सब खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब जो है वो ऐप का जमाना है, जैसे अब आप बताइए आप उसमें क्या कर सकते हैं, अब आप थप्पड़ नहीं मार सकते हैं कि नहीं, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया। तो हमारी जो ऐप है ना न्यूज ऑन AIR ऐप जो है उससे आप जुड़ सकते हैं और हमारे तमाम जो चैनल्स हैं आकाशवाणी के उन्हें आप सुन सकते हैं और इसके अलावा हमारे वेव्स OTT प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। तमाम सारी जानकारी के बाद मैं गया जी सोने मगड़ो, बताइए क्या हाल चाल है। मैं हूं शालिनी और आपका नाम तो आप जानते ही होंगे और फिलहाल जो आप नहीं जानते हैं वही हम आपको बताने आए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी बॉलीवुड से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें, ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और न्यू रिलीजेस और तमाम सारी बातें। लेकिन जो सबसे खास बात है वो आप जानते हैं कि आज हम बनाते हैं बॉलीवुड सरताज, हम खेलते हैं क्विज, उसमें पूछते हैं आपसे सवाल और

0: आप देते हैं जवाब और बन जाती है बॉलीवुड से टच। सांस ले लेने दीजिए, बहुत देर से बोल रही हूं मैं। फिलहाल तो उठाइए फटाफट से, हमारा जो फोन नंबर है वो सेव करिए, 9868107070। इस पर आप हमें मैसेज करके बताएंगे जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं सारी बातों में छुपा होगा आज का सवाल जो मैं आपसे करूंगी, उसका जवाब आपको देना होगा। तो तैयार हो जाइए, सुनिए गाना।
1: प्लैटिनम रिकॉर्ड शहर टेक वन।

बिल्कुल, आपके शहर में हुए, दिल्ली शहर में। और यहाँ पर दिल्ली शहर में एक जगह है जिसका नाम है आकाशवाणी, और आकाशवाणी में है एक चैनल जिसका नाम है रेनबो 102.6। और यहाँ पर एक जो है आपके साथ बैठकर जो गुफ्तगू कर रही है उसका नाम है शालिनी। शालिनी कहते हैं मुझे। और बॉलीवुड ट्रेल्स शुरू हो चुका है शो, आप सुन रहे हैं इसे यहाँ 102.6 पर। और अब हम आपको जो है बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम सारी बातें बताने वाले हैं, लेकिन आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आपको अपना मोबाइल लेकर तैयार रहना है, क्योंकि जितनी भी सारी बातें यहाँ पर होंगी ना, उन सारी बातों में आज का सवाल छुपा होगा, और उसी सवाल के जवाब को देकर ना आप बन जाएंगे बॉलीवुड सरताज। तो 9868107070 है नंबर, 9868107070 इस पर आपको मैसेज करके बताना होगा जवाब। और फिलहाल बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो अब जो यश के फैंस है ना, एक्टर यश के फैंस, उनके लिए खबर है कि जो यश की टॉक्सिक है ना मूवी, वो 26 अगस्त को जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज

थी, लेकिन अब वो लगभग एक महीने के अंदर ये फिल्म जो है वो ओटीटी पर दस्तक देने वाली है। तो खबरों के मुताबिक यश की जो टॉक्सिक है अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, ये 25 सितंबर को 2026 को ही ओटीटी पर जो है वो स्ट्रीम हो सकती है। हालांकि अभी तक जो है मेकर्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कोई रिलीज डेट तो नहीं आई है, लेकिन इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो फिर ये फिल्म जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज होने के लगभग एक महीने के बाद यू नो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आ सकती है, तो लुत्फ उठाइएगा। फिलहाल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है क्या एक गाना अगला जो मैं आपके लिए चलाने वाली हूँ, तो जे जे करने के लिए तैयार हो जाइए। क्यों, राम सिया राम आ रहे।

तो सियाराम के जय जय करने के बाद ना आपको जो है वो सीताराम जो है वो आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। तीन फिल्मों के रूप में आपको वो नजर आएंगे आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि साल 2026 में ना रामायण पर आधारित एक दो नहीं बल्कि तीन बड़ी फिल्में जो है वो सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं। एक फिल्म जो है वो सितंबर में दस्तक देगी और दो फिल्में आएंगी अक्टूबर में। दिलचस्प ये है कि रामायण पर जो फिल्में दो फिल्में हैं ना वो रणबीर कपूर वाली जो रामायण है ना पार्ट वन उससे पहले रिलीज होंगी। तो सबसे पहले रिलीज होगी फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की, ये जो है वो 25 सितंबर को रिलीज होगी और ये जो है वो अभिषेक सिंह के निर्देशन में बनी है और नई पीढ़ी तक रामायण की जो कथा है उसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए। इसके अलावा जो दूसरी फिल्म है वो वाल्मीकि रामायण है, जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये रिलीज होने वाली है 2 अक्टूबर को और ये फिल्म जो है वो वाल्मीकि रामायण पर जो है वो आधारित होगी, महर्षि वाल्मीकि की ये रामायण पर आधारित होगी। इसके अलावा बात यह है कि फिल्म का जो निर्देशन है वो भावना तलवार ने किया है और जो तीसरी मूवी है रामायण पार्ट

वन जो कि रणबीर कपूर वाली और जो फिल्म है जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो फिल्म जो है वो तीसरी सबसे बड़ी फिल्म है नितेश तिवारी की, रामायण पार्ट वन। ये फिल्म 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसको दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा और भारत के साथ साथ दुनिया भर के दर्शकों तक जो है उसको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी आपको नजर आएंगे भगवान राम और सीता के किरदार में। तो इनका आप जो है वो इंतजार करिए, जल्दी ही आपको वो थिएटर्स में नजर आएंगी फिल्में। लेकिन फिलहाल आपको इंतजार जिस चीज का नहीं करना पड़ेगा वो है एक बहुत ही अच्छे से ट्रैक, वो मैं आपके लिए प्ले कर देती हूँ। दुबा

नहीं मतलब दिल का साइज देखिए और आंखों का साइज, क्या ये मुमकिन है कि दिल जो है वो आंखों में डूब जाए? लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है ना, तो आपको दिल को स्विमिंग सिखानी चाहिए थी, फिर ऐसा नहीं होता। मैं बता रही हूँ आपके, ऐसी बातें नहीं, मेरी बस ही मिलती है। मेरा नाम है शैलिनी और बॉलीवुड ट्रेल सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। यहाँ पर कर रहे हैं ढेर सारी बातें बॉलीवुड को लेकर, बॉलीवुड से जुड़ी हुई, इसकी फिल्मों से जुड़ी हुई। तो हमने आपको अभी बताया रामायण के बारे में, और अब आपको मैं एक और गुड न्यूज बता देती हूँ। वो ये है कि रोमांटिक फिल्में अगर आप पसंद करते हैं ना, तो उसके लिए एक फिल्म जो है वो हाल ही में ओटीटी पर जुड़ने वाली है। तो उसमें जो है वो डांसिंग स्टार शांतनु महेश्वरी जो है वो लीड रोल में नजर आएंगे। और ये फिल्म भारत में 2025 में रिलीज हुई थी हालांकि, लेकिन अब जो है इसे आप जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये जो है लव इन वियतनाम फिल्म का नाम है और एक लव ट्रायंगल है ये। इसकी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो 7 है।

0: इस फिल्म को मैडोना इन अ फर कोट नाम की नॉवल पर इस पर आधारित है, इस पर बनाया गया है। इसको राहत शाह काजमी ने डायरेक्ट किया है, और अगर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो पूरे ये वाली जो फिल्म है ना आपको फील गुड करा देगी। तो फील गुड कराने से मुझे याद आया कि पति जो है, मतलब पति से पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को ना जन्नत बना दूंगी। तो पति कहता है कि जन्नत तो ठीक है, दाल रोटी तो बनाना आता नहीं, जन्नत तो बाद में बनाऊंगी। है ऐसा मत कहिएगा, आप जानते हैं उसके बाद क्या होगा। फिलहाल ऐसी गलती बिल्कुल भी मुआफी नहीं मिलती उस चीज की। यहां पर मिलते हैं आपको क्या बढ़िया सी बेहतरीन से ट्रैक, लेकिन उससे पहले मैं एक कमर्शियल यहां पर प्ले करूंगी, एक दो कमर्शियल, उसके बाद आप सुनेंगे एक बहुत ही बढ़िया सा गाना, और उसके बाद नंबर आएगा किसका। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी सवाल, आज का बॉलीवुड सरताज से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछूंगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 9868107070 नंबर, जिस पर आपको मैसेज करके आपका जवाब देना होगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, ठीक है जी।
1: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: आज फिर लेट हो गए?
5: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
4: क्यों बैठे थे बाहर?
5: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
4: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे, रवि भैया को घर ही ले आते।
5: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

क्या बात है, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो यही पर हूँ, कहीं चली थोड़ी ना गई हूँ। मेरा नाम है शालिनी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6। यहाँ पर चल रहा है शो क्या क्या क्या क्या क्या, आपको याद रखना चाहिए ना। कितनी बार बताऊँ मैं, आदि होती है। चलिए फिर से बता देती हूँ, बॉलीवुड ट्रियल चल रहा है शो, और इस आपको बता देती हूँ कि हमारे इस 102.6 की फ्रीक्वेंसी के अलावा आप हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर, और साथ ही साथ आप हमारे OTT प्लेटफॉर्म का भी लुत्फ उठा सकते हैं। वहां पर एंटरटेनमेंट का डबल डोज आपको मिलेगा। और अब बारी आ चुकी है आज के सवाल की, तो फटाफट से तैयार हो जाइए। नहीं नहीं नहीं, शीशे के सामने जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल जाएगा काम। आपको सिर्फ अपना फोन लेना है हाथ में, 9868107070 नंबर, 9868107070 नंबर। तो आज का सवाल क्या है, कान खोल कर सुनिएगा ध्यान से। एक्टर यश की कौन सी वो मूवी है, कौन सी वो फिल्म है, जो कि 25 सितंबर 2026 को OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। बताइए बताइए बताइए जल्दी से। आपने ध्यान से अगर सुना है ना, तो आपको ये सवाल का जवाब जरूर बताओगा, और आप आज बॉलीवुड सरताज बन सकते हैं। तो मैं क्या जी, किस बात का इंतजार कर रही हूँ, तुम ये फटाफट से जवाब भेज दो, मैं इंतजार कर रही हूँ। आपका मैसेज बॉक्स खोल लिया है मैंने। फिलहाल अगला वाला गाना आपके लिए चला देती हूँ मैं, क्या कहते हैं, घुंघरू टूट गई।

वेलकम बैक है जी आपका साढ़े शो में, जिसका नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स। और आपके साथ में शालिनी। शो का नाम तो मैंने आपको बताई दिया, लेकिन चैनल का नाम भी तो आप सुन लीजिए। आकाशवाणी रेनबो कहते हैं, 102.6 इसकी फ्रीक्वेंसी है। और आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, साथ ही आप जो है वो हमारे OTT प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है वेट्स। फिलहाल यहाँ पर आज जो है वो बॉलीवुड सरताज क्विज चल रहा है इस समय। और हमने आपसे सवाल पूछा था कि एक्टर यश की जो फिल्म है, जो सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, वो कौन सी फिल्म है जो अब 25 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। तो बहुत सारे जवाब जो है वो लगातार आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और मैं स्क्रॉल कर करके ना परेशान हो गई हूँ, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। फिलहाल आप भी जो है फटाफट से जवाब दे दीजिए कि यश की, एक्टर यश की जो फिल्म है, फेमस फिल्म है, वो कौन सी फिल्म है, उसका नाम आप हमें बताइए, जो 25 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। फटाफट से बताइए। 9868107070 इज द नंबर, 9868107070 है नंबर। और हाँ, बॉलीवुड सरताज तो आप बनेंगे ही, कोई एक ही बनेगा, लेकिन जितने भी लोगों ने सही जवाब दिया होगा ना, उनका नाम भी मैं यहाँ पर बताऊंगी जरूर। तो फटाफट से भेजिए मैसेजेस।

नहीं, बिल्कुल भी हैरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की प्यार मोहब्बत की बातें हम करते ही रहते हैं, क्योंकि हम अपने सारे लिसनर से बहुत प्यार करते हैं। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप, चैनल का नाम है रेनबो, ये तो आप जानते हैं, और साथ ही साथ शो का नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स में चल रहा है क्विज फिलहाल बॉलीवुड सरताज बनने के लिए। तो हमने आपसे सवाल पूछा था कि एक्टर यश की कौन सी वो फिल्म है जो कि जल्द ही 25 सितंबर को, आने वाले 25 सितंबर को जो है वो OTT पर रिलीज होने वाली है। तो मेरा मैसेज बॉक्स जो है वो एकदम फुल हो चुका है, और आप भी अगर जवाब देना चाहते हैं तो फटाफट से दे दीजिए, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 9868107070 जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर में आपको हम मिलाएंगे आपके बॉलीवुड सरताज से। तो जल्दी से जवाब दीजिए, और फिलहाल ये अगला ट्रैक सुनिए। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही जबरदस्त खबर, वो ये कि हमारे जो पुरानी फिल्मों के जो विलन होते थे ना, वो बहुत ही मजेदार होते थे, बहुत ही डरावने होते थे ना, उनको सुनकर डर लग जाता था, जैसे कि मोगैम्बो खुश हुआ। और इसके अलावा जब भी विलन जो है वो हीरोइन को जो है वो किडनैप करके ले जाता था, तो हीरोइन कहती थी मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, तो विलन कहता था कि इतनी मेहनत करके हीरो से पंगा लिया, अब मैं तुम्हें छोड़ दूं, भगवान के लिए छोड़ दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज के जो विलन है, समय बदलने के साथ साथ ना, वो ना सिर्फ आपको डराते हैं बल्कि आपको हंसाते भी हैं। क्या कहते हैं बाबू कैसन वाह, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाने हैं आप, मैं बात कर रही हूँ रवि किशन की, जो कि मिर्जापुर द मूवी में उन्होंने खतरनाक विलन की भूमिका जो है वो निभाई है, और उनकी ये जो फिल्म है उसको बहुत ज्यादा खुश हुए उनके फैंस ये देखकर। लेकिन ये साल जो है वो रवि किशन के लिए बहुत ही शानदार रहा है, उनकी 5 फिल्में थिएटर में रिलीज हुई हैं, आर्यभट्ट का 0, पैदी, धमाल 4, भाभी जो घर पे है, फन ऑन द रन, मिर्जापुर द मूवी, ये जो है वो लेटेस्ट रिलीज है उनकी, और इसने जो है एक धमाल मचा रखा है। बिल्कुल 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन अब तक इसमें जो है वो रवि किशन ने बब्बन का किरदार निभाया है, मतलब आप अभी भी देख सकते हैं, और अब तक का जो टोटल करेक्शन है वो पहुंच चुका है 281 करोड़। मुझे ना पानी पीने की जरूरत है, मुझे बहुत ही अभी फील गुड नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए उनके लिए तो अच्छी बात है ना, हमारे पास कुछ आए ना आए, लेकिन आपका एंटरटेनमेंट तो होता ही है ना, एंटरटेनमेंट तो हमें मिल ही रहा है। फिलहाल आपको देना है जवाब कि यश की कौन सी फिल्म है जो OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है। तो जवाब देने के लिए नंबर है 9868107070, फटाफट से सॉन्ग प्ले करते हैं, उसके बाद मिलते हैं जवाब के साथ।

0: वेलकम बैक डियर्स, यू आर ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी। शो चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स में मैं हूं आपके साथ। ये तो मैंने आपको बता दिया कौन हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आकाशवाणी रेनबो पर आप हमें सुन सकते हैं, न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी आप हमें सुन सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं वेव्स। लेकिन फिलहाल जो आपके लिए बेहतरीन से खबर है वो ये है कि आज के बॉलीवुड सरताज जो है वो हमें मिल चुके हैं। सही जवाब उन्होंने हमें दे दिया है, और वो कौन है? प्रवीण जी हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज के बॉलीवुड सरताज वो बन गए हैं। और ये जो है वो खरगोन मध्य प्रदेश से, इन्होंने हमें सही जवाब दिया है। अगली आवाज आप प्रवीण जी की सुनेंगे। हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: मेरा नाम बढ़िया है।
0: आपको कैसा लग रहा है? तो मैं जानती हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप ही बताइए कि पहली बार आप बॉलीवुड सरताज बने?
1: नहीं, कई बार बन चुका हूँ।
0: अरे वाह, तो मतलब आपकी तो लॉटरी लगी हुई है। नहीं, वेरी नाइस। तो चलिए, अब हम जो है आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आप बॉलीवुड सरताज बन गए हैं। और फटाफट से आप जो है वो सही जवाब हमारे लिसनर्स को बता दीजिए।
1: मैम, टॉक्सिक फिल्म है।
0: टॉक्सिक है मूवी का नाम, और हमने सवाल आपसे क्या किया था
1: कि यश की जो मूवी आ रही है अभी OTT पे रिलीज होने वाली है, जो पहले पिछले महीने रिलीज हुई थी, उसका नाम पूछा था आपने।
0: जी बिल्कुल, तो सही जवाब है टॉक्सिक। चलिए, ये तो आपको ही बधाई की बात, लेकिन अब आप हमें बताइए कि आकाशवाणी से आप जब कितने सालों से जुड़े हैं, और क्या कौन से शोज आपको पसंद हैं यहाँ पर?
1: आकाशवाणी के तो सभी शो पसंद है, और आकाशवाणी से मैं सबसे पहले जुड़ा था 2002 से, पर बीच में मैंने छोड़ दिया था, फिर 2019 से शुरू किया था जब से ये।
0: हेलो,
1: अब से मैं कंटिन्यूस सुनता आ रहा हूँ।
0: बहुत अच्छा करते हैं।

0: और आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि आप छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ऐसी क्या नाराजगी हो गई थी आप छोड़कर चले गए थे? हाँ
1: नहीं, मैं स्टूडेंट था ना उस समय, स्कूल में
0: ओ
1: पढ़ता था, कॉलेज में, तो मैं घर से चले गया था दूसरे शहर, तो
0: ओके।
1: वहाँ छोड़ गया था सुनना।
0: वैसे बाकी शहरों में भी हमारा जो है रेडियो तो आता ही है ना, तो आप वहां पर सुन सकते हैं
1: हाँ
0: अलग फ्रीक्वेंसी में। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, आपने हमें जवाब दिया। और आज के हमारे बॉलीवुड सरताज के लिए तालियां। कुछ कहना चाहेंगे आप हमसे? हेलो,
1: रेडियो आकाशवाणी FM रेनबो के सारे चैनल सभी सुनना करें, सभी जितने भी लिसनर है बस।
0: बस यही कहना था। बड़े शर्मीले किस्म के आप, नहीं आप कुछ और कह ही नहीं रहे, मुझे बुलवाना पड़ रहा है आपसे जबरदस्ती। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बॉलीवुड सरताज बनने के लिए, आपको बधाई और आपका धन्यवाद। थैंक्स
1: थैंक यू।
0: टू यू टू। तो ये थे आज के हमारे बॉलीवुड सरताज, और उसके अलावा जो है वो हम आपको बता दें कि बहुत से लोगों ने सही जवाब भी दिए हैं हमें, तो उनके नाम हम आपको अब से थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये वाले गाने चलाएंगे आपके लिए, सुन लीजिए इसे ध्यान से।

तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत सारे लोगों ने हमें सही जवाब भेजे हैं कि इस बात के जो हमने बॉलीवुड सरताज का जो सवाल किया था कि एक्टर यश की जो फिल्म है वो कौन सी फिल्म है जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है, तो सही जवाब हमें जो दिया है अभी हमारे बॉलीवुड सरताज जो बने प्रवीण जी ने खरगोन मध्य प्रदेश से, वो आज के हमारे बॉलीवुड सरताज बन गए। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और सरताज भी हैं जिनका नाम हम आपको बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि बॉलीवुड सरताज तो एक ही बनता है, लेकिन जिन्होंने सही जवाब दिया उनका नाम भी आपको हमें बताना बनता है। तो हमें सही जवाब भेजा है, किसका है सही जवाब, विनोद सोनी का सही जवाब है, मेहना चौक से, बठिंडा से। और इसके अलावा गलत जवाब भी भेजे हैं लोगों ने, लेकिन गलत जवाब का नाम नहीं बताऊंगी मैं आपको यहां पर। नेक्स्ट है ये हमारे पास, इन्होंने देखिए जवाब भेजा, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये इन्होंने भी जवाब दिया है टॉक्सिक। और ये किस बात का जवाब दिया इन्होंने, सनी देओल का नाम क्यों लिखा है आपने, मैंने तो पूछा था यश के बारे में, आप इन्हें सनी देओल के बारे में तो कुछ भी करेंगे कि आपने, ऐसा थोड़ी होता है। उत्तम नगर से हमारे पास आधा जवाब आया है क्योंकि इन्होंने फिल्म का आधा नाम लिखा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए कहते हैं पूरी बात ध्यान से सुना करिए, पहले ही आप मैसेज करने लग जाते हैं इतनी जल्दी में होते हैं। अब हमारे पास अगला जो जवाब है वो है हरिनगर, आयुष का, हरिनगर नई दिल्ली से, टॉक्सिक जवाब इन्होंने भेजा है, सही जवाब है बिल्कुल। और इसके अलावा उत्तम नगर से हमारे पास आया है अधूरा जवाब, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, आपको भी जो है इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। देखिए आपका नाम बोलते बोलते रह गया। अर्चना राजपाल जो है इन मुखर्जी नगर दिल्ली से, इन्होंने जवाब भेजा है सही, टॉक्सिक फैन इंडिया फिल्म, देखिए आई डोंट नो इन ये क्यों नहीं सुनते हैं पूरी बातें, आप एस रेडियो सुनिए, ध्यान से सुनिए ना। बस देखिए अगला जवाब आया, सिर्फ टॉक्सिक लिख के भेज दिया, नहीं नाम लिखा है ना ही कुछ और लिखा है। तो ऐसे कैसे बताएंगे हम कि आपका नाम क्या है, गुमनाम है कोई, ऐसे करके नहीं चल सकता है ना यहाँ पर। मोहम्मद फुरकान जो है वो इन्होंने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने लिखा क्या मैं आपको बताऊं, टोकसी लिखा है इन्होंने, ऐसे थोड़ी होता है, टॉक्सिक नाम है फिल्म का, गलत जवाब नहीं देना है। और इसके अलावा जो अगला जवाब है, अब देखिए अब ऐसे थोड़ी चलेगा, जवाब सुनने के बाद अब आप जवाब भेजेंगे तब थोड़ी मैं आपका नाम बताऊंगी, बहुत होशियार समझती है आप अपने आप को, मैं भी होशियार हूँ, मैंने टाइम देख लिया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जवाब बता दिया, आपने फटाफट से उसे लिख दिया और भेज दिया, ऐसे थोड़ी होता है। फिलहाल मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी क्योंकि जाने का समय हो गया है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आपने हमें भेजे हैं ना कि सारे मैसेजेस मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मैंने पूरी कोशिश की जितने भी मैसेजेस मैं इंक्लूड कर सकती थी, लेकिन बहुत से जवाब ने गलत भी है, ऐसी काम मत किया करिए, मुझे ना फिर नाम मैं बोली नहीं।

भी क्या कर सकते, मेहनत भी होती है और आपका नाम भी नहीं बोला कि देखिए। फिलहाल बॉलीवुड ट्रेल्स में आपसे मैं लूंगी विदा, क्योंकि अगला शो आपके लिए आने वाला है। तो आप सुन रहे हैं क्या आकाशवाणी रेनबो 102.6, इसी तरह से सुनती रहिए। मैं गया जी सोने मकड़े तोड़ा ना, तुसी अपना ख्याल रखियो ते नाले मैं थानू ए कहना चाहनी हां कि ख्याल रखी ते गाना सुनी जाए, ठीक है जी। शालिनी सेज टाटा।

0: एमडीआर का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रुपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य एमडीआर लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर एमडीआर शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,235 पर था। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person, P2P, UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate, MDR, framework for small merchants will also remain free. The ministry said that consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना मिति 16 सितंबर दिन बुधवार नूं शाम 5:30 बजे।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तिमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तिमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई
1: प्रोग्राम चल रहा है घर परिवार ते स्टूडियो दी घड़ी ते समय है जी 12:53 ते प्रोग्राम दे विच शामिल कर दिया साडी अगली भैन नु
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो हां जी नमस्कार जी
3: नमस्कार जी मैडम जी हो की हाल है जी
2: हां जी मेरे हाल बढ़िया तुसी सुनाओ
3: बढ़िया जी बढ़िया अज फोन लगा वा काफी टाइम तो बढ़िया हो गए जी और जी
2: हां जी नाम दस दो पहला अपना तुसी
3: करमजीत कौर है जी
2: करमजीत कौर
3: हां जी हां जी
2: जी किथों गल कर रहे हो
3: कल्याण मलकी जिला बठिंडा तो जी
2: जी ते किन्ने टाइम बाद तुहाडी कॉल लगी है
3: हां ता जी 2 साल बाद लगी है जी
2: अच्छा तुसी पहला मिलाया नहीं फोन
3: पहला जी मिलाउंदे ता सीगे पर काम कार ते वेल नहीं सीगी लगदी जी फिर साडा काम खराब हो गया बस अज कोदर अचानक ही लगी उस पई पई ने लाली प्रोग्राम सुनी आंदे सीगे तुहाडा
2: जी
3: हां जी
2: बहुत वधिया कीता तुसी कॉल मिला ली ते हुण तुसी मैनू ए दसो वी तुहाडे हत्थां विच केड़ा हुनर है
3: ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਗੇ ਬਸ ਤਰਪਾਈਆਂ ਸਲਾਈ ਕਢਾਈ ਹਾਂਜੀ ਪੀੜੀਆਂ ਬੁਣਨੀਆਂ ਮੰਜੇ ਬੁਣਨੇ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਨੀਆਂ
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ ਕੋਟੀਆਂ ਸਵੈਟਰਾਂ
2: ਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ
3: ਇਹ ਕੰਮ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸੀਗੇ
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕੁਛ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀਗਾ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ
2: ਜੀ
3: ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਵਧੀ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬਸ ਕੱਪੜੇ ਸਿੱਖ ਲਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਜੀ 10ਵੀਂ ਚ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰੀਆਂ ਦੁਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪੱਖੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी यादविंदर सिंह तो प्रदेशक खबरां सुनो। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरमियान UPI लैन देन ते कोई चार्ज नहीं लगेगा, भावें भेजी गई रकम किन्नी भी होवे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों लई जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR ढांचे तहत आने वाले लैन देन अते व्यापारियों नू 2000 रुपए तक दे किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चार्ज सिर्फ 2000 रुपए तो वध दे व्यक्ति तो व्यापारी लैन देन ते ही लागू होएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि UPI ऐप प्रदाता प्लेटफार्म फीस या लुकवे खर्चे नहीं वसूल सकनगे। मंत्रालय ने बैंकों को हदायत की कि वो ये यकीनी बनाने के व्यापारी UPI भुगतान वाली मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR का बोझ गाहकों उत्ते ना पाउण। 2000 रुपए तो वध दे व्यक्ति तो व्यापारी लैन देन उत्ते 0.4% की मामूली MDR दर लागू होएगी, जबकि 75,000 रुपए और इस तो वध दे उच्च मुल वाले लैन देन लई MDR की वध तो वध हद 300 रुपए प्रति लैन देन तय की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 16 सितंबर दिन बुधवार नूं शाम 5:30 बजे।

मिनट ते तुसी सुनोगे आकाशवाणी बठिंडा दा मकबूल प्रोग्राम मुश्किल दसो हल दसांगे अते इस दे तहत स्टूडियो विच मौजूद होंगे श्रोमणी अकाली दल वारिस पंजाब दे हलका मौड़ दे इंचार्ज लखबीर सिंह लखा सिधाना।

0: main Red Sea oil port. Well, World Ozone Day is being observed across the globe today. The day is dedicated to raising awareness about the crucial role of the ozone layer in safeguarding life on Earth. The theme of 2026 is Global Action for a Cooler Planet. Union Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Kirti Vardhan Singh, today said that India has demonstrated that sustainable economic growth is possible while protecting the environment. He was addressing a program in Mumbai to mark the 32nd World Ozone Day. Mr. Singh said, India has exceeded its targets under the Montreal Protocol without compromising on development. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Haryana, Chandigarh, Punjab for today. Similar weather conditions are also expected to prevail over Kerala, Mahe, Punjab, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. For Delhi, the weather agency has forecast a spell of light rainfall during the evening today. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions are expected over Bihar, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan for the next 2 to 3 days. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night to take an unassailable 2-0 lead in the 3-match series. Chasing a target of 160 runs, India comfortably reached 163 for 3 in 14.5 overs. Sanju Samson top scored with a blistering 57 off 22 balls, while Abhishek Sharma contributed 39 runs off 19 balls. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 297 points to 74,301, while Nifty added 106 points to 23,225 when reports last came in. And before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for mature tax policy debate, keeping national interest first. India lodges strong protest with Pakistan over unacceptable conduct of Pakistani naval units leading to naval collision in international waters. India Electric Mobility Index 2025 announced by Niti Aayog, Delhi emerges top performer in adopting electric mobility, followed by Maharashtra and Karnataka. Saudi Arabia says it intercepted Houthi drone near Makkah. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देश हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
2: The question should not only be
3: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगले 2 दशकों में भारत के टैक्स